देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी।

0: विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवा पुरुषा महादेवा की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद।

हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

अरविन्दुसयुक्तं मनित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्र

0: अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय पूज्यपाद, प्रातस्मरणीय हमारे घनिष्ठ मित्रों में, हमारे घनिष्ठ प्रिय गुरु भाई और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचंद्र जी महाराज की परम कृपा से आज हमारा यहाँ आना हुआ। पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम सभी लोगों को, जो विशेष करके भारत से आए हुए हैं, अभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय पूज्यपाद का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। आपका बहुत प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। प्रेम छुपाया न छुपे, प्रेम करे प्रकाश, दाबी दुबी रहे नहीं कस्तूरी की बास। तो प्रेम कभी छुपता नहीं, तो उसी प्रेम के साथ में, उसी प्रेम वाणी से आज हम कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग के बारे में। पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री ने योग की महिमा गागर में सागर भर दिया। योगा कर्म सुकौशलम, योगा अग्नि कर्म दग्धानी। योग के बिना मानव का जीवन सफल नहीं होगा। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गुड इवनिंग। आई हैव टू स्पीक नाउ लिटिल बिट इन इंग्लिश बिकॉज अवर भक्तास फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम विथ मी एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो वुड लाइक टू हियर व्हाट आई एम telling or talking. You all speaks English very good because you live in America. And Swamiji need not to understand because he is in his inner dhyan mein sab kuch mil jata hai. He knows what I am saying, that's enough. Theek hai na?
1: Perfect.
0: और उसमें अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे लिए समथिंग, थैंक यू। योगा, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म के द्वारा हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराजा भर्तरी, व्हेन ही बिकेम ए सन्यासी, ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग। देन ही सेड, आई वुड लाइक टू पे माय रिस्पेक्ट टू ऑल देवास, ऑल गॉडेस, बट देन ही सेड, बट ऑल द देवास, ऑल द गॉडेस, दे are bounded by karma. Okay, then I will pray to God, Brahma, Vishnu, etc. Then he said, Bhagwan, jinhone avatar liya hai, two kinds of incarnation, Nimit and Nitya. So why should I not pray to the God? Then he said, no, God is also bounded by karma. Shashi dalaraha, shame dalaraha, Lakshman ki pran jaraha, Hanuman kab aoge, na malum meri kis janam ki karam phal raha. Tab Bhagwan Ram bhi ye keh rahe hain. To, yes, so the Maharaja Bhartri, he became monk, sannyasi. So now he thinks, I will pay my respect and adoration to the Supreme who incarnated. Then he said, but they are also bounded by karma. There is a story in the holy book Ramayana, and where there Bhagavan Ram is saying that Lakshman's, this story next time I will tell you perhaps. Then the Maharaja Bhartri, the King Bhartri said, why I should not pray and respect the karma? Bhagavan bhi karam se bandhan mein hi hai. तो मैं कर्म को क्यों नहीं नमन करूं? इसीलिए द एक्शन एक्शन इज द ग्रेटेस्ट. टाइम विल नॉट वेट फॉर एनीवन एंड द कर्मास विल नॉट लीव यू फ्री एट ऑल. देयरफॉर वेयर द एक्शन एंड व्हेन देयर इज अ रिएक्शन देयर इज अ एक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन. Now, are we here in this life as a reaction or action? This is a cycle of birth and death, coming, going, all through the sadhana, through the yoga, practice, and the blessing of the saints and Guru Kripa Hi Kevalam. Well, in this creation, 8.4 million different kind of the creations. One is the human, and human can get that liberation or become free from the karma. But human need it. God gave a most powerful tool to the human, and that's a buddhi. Buddhi means intellect. Needs education. Which kind of education parents gives us, like that we will be. Education should be that kind of education, what we call ethic, morals, and spiritual. This makes a human. Otherwise, body is like a human, but behavior quality is like the devil's or a different kind of quality. So, first mother, first God is the mother, Matri Devo Bhavaha, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. So first God is the mother and then the father. Their education will lead our life.

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं। ये शंख इतना चमत्कारिक है, ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है।

आपकी माया शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये? अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मिला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकहियों चारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकहियों चारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया। तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहाँ चले गए थे? कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा, शंकर दादा मर गया क्या? मर गया बापू, तो सो गया शंकर दादा ने, सो कही है लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे है क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के 8 और मैं 9, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आ करके वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया, और वो जो नकली से लेकर आया उसको उसके झोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंकर भगवान, कराओ ना, क्या कराए? और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे, और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा, कि वो क्या है भगवान,

कि मांगना 1000 रुपया तो वो कहे 1000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है, संघ बोलता है 1000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो, के लाओ देओ कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो किसी को धक्का देना ना, अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं मेरा नाम है डपोल संत। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया, अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी, बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक, कि यह ऐसे कैसे हो सकता कि देखिए हे शंकर भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए, तो भगवान शंकर देव कहते अच्छा भक्त आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ 10 सोना आ जाएगा, कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था भगवान उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है, दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए तो बोला कि अब तो कोई शंख है ही नहीं, तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया, दोस्त ने कहा हे शंख भगवान मुझे 10 किलो सोना चाहिए, क्या 10 किलो के 1 टन ले ले भाई, कि हाँ दीजिए कि क्या धक्का दे, अरे ये क्या है कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम है डपोल संघ, तो तब से डपोल संघ बना, खाली खुली खुली बातें करता है वो कुछ नहीं करता, क्यों साहब जी डपोल संघ। तो डपोल संघ जो था आ गया चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी, तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना, कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संघ वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what do you want? He said, I want money, I want this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell this coins, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this? So in the night, the friend took away the real coins and put it the fake coins. And then the man went next day, after a few days he reached his village and he said, village people, now I have a siddhi, perfections, God gave me everything, now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So he said, hey Shankadev, oh Lord, please, provide the best

food for all. And there's nothing happened. Because the real cause, he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean, and then Shiva gave him another one, and that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, take $5,000,000. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutkala. Wo chutkala kya hai? Wo bhojan ke andar chutney. चटपटी चटनी किया तो वो जीभ के अंदर में फिर स्वाद आ गया. ऑलराइट नाउ एक्सरसाइजेस. ऑलराइट तो आप सीधा बैठे. वेरी गुड. सिट स्ट्रेट. बहुत अच्छा. वेरी गुड. Now, stretch your legs. बिल्कुल सावधान. आपको बिल्कुल हल्का एक्सरसाइज बता रहा हूं, बट इज पावरफुल. ठीक है. सो कुर्सी पे बैठे हैं, वो कुर्सी पे बैठे रहे. घुटने को जोड़ दो. यस. और लेग्स लिटिल स्ट्रेट आउट. पैरों को थोड़ा लंबा कर दो. बहुत अच्छा. इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड इंटरलॉक योर थम्स. स्ट्रेच योर हैंड्स मोर अप. तो ये साइड मसल्स stretching and hand down on the thighs. Once more, inhale and exhale. Inhale Exhale. Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sidewards and above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna, bolna mat. श्वास लीजिए एक और दो. दूसरा था एक और दो. अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए. घुमाए एक, श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए.

और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थूली को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट And inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir ko dekhi upar aur swas chhodte hue Jalandhar band. Akashi mudra aur Jalandhar band. Bahut acha, bahut hi acha. Ab पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो वो सब टू वन टू अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इसे एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव Other direction, one, two, three, four, five. बहुत अच्छा पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए और अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक
दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। जो एक मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा, उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में, अरे वाह। अब इसको बंद करें या खोलें, मुट्ठी को बंद करें या खोलें, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। भाई देखो, खाने का बढ़िया हो तब मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुक टू योर पाम, सीधा बैठो ही, हाँ, नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके, टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस, एंड नाउ ओनली ओपन द पाम द लेफ्ट हैंड एंड लुक टू योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, बट राइट हैंड इज होल्डिंग योर रिस्ट। देखिए आपका हाथ बिल्कुल लुक्स लाइक ए पेल। अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, लुक योर फिंगर्स, लुक योर पाम्स, एंड नाउ रिलीज योर राइट हैंड एंड लुक टू पाम, व्हाट्स हैपनिंग? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो, कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं, इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हैं हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखा है, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लिखे हुए कहाँ है, उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स।

0: And now, when I say three, one, then you will release. Three, two, one. हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस डू इट लाइक दिस। जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में एक चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे वहां क्या आएगी तो महाराज नहीं थोड़ा बहुत चमत्कार करें। ठीक है चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं। हाथों नाउ मिरेकल, नाउ यू विल हैव ए मिरेकल। यू कैन सिट स्ट्रेट इफ यू वांट, सिट इन योगा पोस्चर, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एनी आसन वेर यू फील कंफर्टेबल। अब ये दोनों हाथ जो हमारे हैं, लुक बोथ पाम्स, हाँ दोनों हथेलियों के अंदर में थोड़ी रेखा अलग अलग है। अच्छा एक तरफ तो धन आता है लेकिन दूसरी तरफ वो चला जाता है। अरे हाँ वो तो जाना चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला पड़ा गंदेला होए। वाह भाई वाह। अब ऐसे करिए हाथों को। अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 टाइम्स मोर टिकलिंग और लाइक ए नीडल्स गोइंग थ्रू योर पाम्स। That we should fold your hands. Fold your hands. And now rub the palms

गुड अब ऐसे 1 इंच दूर रखो। अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है, और ऐसा करिए धीरे धीरे। वो प्रेशर आता है ना, मैग्नेट। और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम। देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन। सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है। कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, या कहीं दर्द है तो वो हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं। तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out, self healing. To bas aaj to itna hi, that's all for today. Session is over, it was 1.5 hours.

0: Pandigyi.
1: Köszöntelek benneteket, és Kapil Trivedi Pandigyit.
0: Yes, Pandiji, you are on the line. Floor is yours.
1: Pandiji, tiéd a szó. So.
2: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन दीप नारायण भगवान की जय सतगुरु देव की जय आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं तो गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन प्रणाम गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं भगवान के चरण में जाते हैं गुरुदेव की शरण में जाते हैं
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग वी वर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस अनुवाद करता हूं सो द Panditji said,
1: Panditji Asmanta.
0: First off, the adoration to our Guru Parampara,
1: Guru Paramparánknak fejezte ki tiszteletét.
0: Then said, we are all blessed one.
1: Aztán mondta, hogy mind áldottak vagyunk.
0: That we are all here together.
1: Együtt lehetünk itt.
0: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said we are lucky.
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan yagya puja
1: havanat yagya pujat fogunk gyakorolni
0: and so let's go what he said in short sentences theek hai thoda bolna taki pura bataye
2: aap aur sab hum sab yagya aur havan pujan ke bare mein janenge yagya ko karne se parmatma ke bahut hi nazdik aap aur hum sab pahunch sakte hain
0: While making the yagya,
1: yagyát végzünk,
0: ceremonies, we will have an easy access to God.
1: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है अगर उस पूजन को उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती है.
0: इन लाइफ मेनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन.
1: Életben sokszor fe és lefelé szállunk.
0: There are different circumstances, different kind of situations.
1: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
0: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
1: Jagják és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान है. यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, कोई साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है, उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है. और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
0: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
1: टू द मैन
0: वैदिक साइंस
1: वैदिक टू द मैन
0: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I told before, he mentioned.
1: A vastu sastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
0: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
1: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
1: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
1: Yagya tűzhely az olyan mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
1: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
1: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं, मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है. और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है.
0: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास विच influences the devas.
1: Iratok, a védák, upanishadok, bantrái hatnak a dévekre.
0: Invite them.
1: Behívja őket.
0: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so-called the pandit.
1: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection,

0: The devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yajna is.
1: Az öt tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
1: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting. It is the science, it is sanatan.
1: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, sanatan.
0: It is eternal.
1: Örök.
0: Unchangeable.
1: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
1: Az igazság.
0: Is that scriptures.
1: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
1: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहां पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
0: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahott kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Egy mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
2: Dhyan.

कृपा। ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण है, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान, गुरु की जो कृपा है वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। आप सब एक बार बोलिएगा, सद

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वो दौलत
0: ग्लोरी
2: दिचैतेश
0: टू डिवाइन मदर
2: दिष्टन्यान्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।